इस कार्यक्रम समाप्त है नहीं पहला आप सबनी समक्ष थोड़ी शायरी और रजू करीश, बट आई डू हैव टू इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इवेंट अनाउंसमेंट्स। गणपति बाप्पा पधारो आना छे सोमवार थी, एना माटे तो कागल ने पेन तैयार राखशो जो तमारे नोंद करवी हो तो। एक वार फरी थी खूब ज हार्दिक स्वागत छे गीतमाला पर आजना दिवस नुं आवतुं गीत, त्यारबाद हूँ फरी पाछो आप सबनी समक्ष हाजर थईश।